और प्रहर लतन सलमारी जी हाँ कल कर लगे निवलो पिचारी है ऐसी कलाना खेड़िया चितर के गया हारी है पढ़िया नोरिया विचार के विचारी है वो चले सोके मारी है वो चले सोके मारी है।

और सब तो आके अपना जिसने ऐसा चुन कर लिया है, जीता है वो अपना पहले का संगी है, जा रहा ना है तक तक का कर लिया है, अंदा के समय रखी है बड़े खेल मोर खेला लल जिया है मोर खेल।

0: सो हर हर नाम सदा सदा समले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया, नानक हर जन हर के होए। हर जप हर सिति रलिया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैमं गुर प्रसाद हम अंदले अंध बिखै बिख राते, क्यों चल है गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक कर के गोले, लिख कत है ना छूटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार, तुदया गह अरदास हमारी, दियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, कोई ना हो ना जान है मेरा, दंडौत वंदन अनकवार, सर्व कला सम्रत, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च, गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासो सरवन कीता। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं एकाग्र

0: नित नित सद हर के, मैं नित हर रोज सद सदा हर वेले हर समय हर साह दे विच, मैं हर सवास विच उस मालक दे नित गुण गावां, क्योंकि यही मेरा जीवन बन गया, यही मेरा जीवन है। जे मैं उहदे गुण नहीं गाउंदा ते मेरा जीवन समाप्त लगदा है, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। इस वास्ते मन जीवै नाम सुन तेरा, ए वाहिगुरु जी मेरा मन जाऊ जिहड़ा जागदा जिउंदा ही इस लई है तेरे नाम नूं सुन के, इहनूं जीवन मिलदा ही तेरा नाम सुन के है। ते जे ए नाम ना होवे ते फिर ए तां मृतक कही है नानका, जै प्रीत नहीं भगवंत उह ते मुरदा हो गया। तो गुरु साहब गुरु रामदास महाराज कहिंदे आ वी संगत विच रल के उहदे गुण गाइए, जो गुरु महाराज ने विचार दित्ती है उहनूं सारियां नाल सांझी करिए और नित गुण गाइए। ए अंदर भावना बना के कि मन जीवै नाम सुन तेरा, मन तेरे नाम नूं सुन के ही जिउंदा है। इसलिए शरीर उठदा बैठदा सौंदा जागदा है, मन अंदर उहदे गुण गा रहा है, मन अंदर उहदा नाम सुन रहा है निरंतर लगातार। तां अंदर दा जिहड़ा आत्मक जीवन है वह फिर अंदरों जिहड़ा वह जीवन बनिया रहेगा, फिर आत्मक तल ते मौत नहीं हुंदी, मन दे तल ते मौत नहीं हुंदी। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे, हर वेले अंदर ओ परमेश्वर दा नाम जेड़ा ओ चलदा रवे, ते नाम सुन सुन के मैं जिउंदा रवां।
1: नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा।
0: किन्ना प्रेम पै गया, किन्ना गूढ़ा प्रेम पै गया। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे जित वेला विसरै, जिस समय टाइम वह विसरदा है मेरा स्वामी मेरा मालिक, तित वेले उस वेले ही, यह नहीं कि सवेरे भुलिया तो उहदा असर शाम नूं दिखाई दिता, नहीं उस वेले ही तत्काल उस वेले उस टाइम ही। जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेलै मर जाए जियो मेरा। उस वेले मेरे जियो मेरी जिंद की मौत है, आत्मक मौत है, जमीर की मौत है उस वेले। ते विसारना किने है, त्रैगुणी माया ने। जेड़ी चीज़ परमेश्वर वल्लों साडा ध्यान भटका देवे वह माया का रूप है, कोई भी हो सकता है वो किसे रूप विच, माया दे कई रूप ने, वो किसे रूप विच भी आके साडा ध्यान भटका सकती है। इसलिए जिस वेले मेरा प्यारा विसरे, मैनू इदां लगदा वी तित वेलै मर जाए जियो मेरा। इसलिए वाहिगुरु जी मेरे अंदर तू कदे भी ना विसरे, विसर नाही दातार अपना नाम दियो, मेरे उत्ते नाम दी बख्शिश करदे रहो करदे रहो। जिन्ना चिर ये सवास चलदे आ किरपा करदे रहो, ताकि एक सवास विच वी तुहाडा नाम विसरे ना, क्योंकि जिस वेले विसरिया उसे वेले ही मौत है, आत्मक मौत है। धन गुरु रामदास महाराज जी ने यह फिर पंजवें पद

सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिब क्या नाही कर तेरा, कर दं देरे सब किस है ते सो पावे, सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया, बाजे शब्द कन्हेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा धारू, सच नाम धार मेरा जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आई वसया, जन इसा सब पुजाइया, सदा कुरबान किता गुर बैठो, जिस दियां ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा धारू, वाजे पंच सौ तित कर सुपागे, कर सुपागे सुद वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुझिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो बिलभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार वरम प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बानी, संत साजन पये सर से पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हे आ पर।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतुरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठै सब।

अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फल पे ढावा दर प्रवान करनी यात्रावां सफल करनी।

दोहराम आज्ञा पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को

सुख फल हर जन पाव हो, नानक कहे सुनो जन पाई। सुख सोहे लड़ा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाए। गुरमत सहज नाम ते आए, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया। तिन जन्म मरन पौ पागा, अंदर अंदर मत दूजी कोई। सुजन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी।

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरका गुरु नानक ली त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास भी सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधा बेताए। सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजाब प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां। हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया। देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराई गए। गुरुद्वारियां दी सेवा ली कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निवाही। तिना दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु चिता विचितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रसे अरियाइत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केश दान रत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान सरदान नाम दान। श्री अमृत सर जियां दे दर्शन स्नान चौंकियां चंडे।

दोहरा आग्या भई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो,

खंडांजा के हाथ में कलंगी सो है सीसो, सो हमारी रक्षा करे गुर कलंगी तर जगदीश। वाहु प्रगट मर्द अगम डा

तांकं पश्य जीवनां सोकोटल गुरु सेवीयं अहनस सहज सुपय दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी राग सोही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद

जिन कार्य सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जप हो सुख फल हर जन पाव हो नानक कह सुनो जन पाई सुख सुह लड़ा हर प्याव हो सुन हर गुण पीने सहज सुपाए गुरमत सहजे नाम त्याए जिन का तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पौ पागा अंदर हो गुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा

काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलम बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, घट घट गे पढ़ पढ़ की जाने। जाव उद करख करा करतारा, प्रजा तरत देहे अवारा। जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहित नर आलम, जानत बेद भेद अर आलम। रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़े उचारत भेदा, जाको भेव नवावत बेदा। ताको करपाहण अनुमानित, महामूड़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत नह पिब। आप आपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा। अंड जे रसे तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकेठा। सगरी सृष्ट दुखाए अचंभव, आ जुगा स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता। जे आस्तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न है। रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला। कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ, ताकि ताप तनक मैं हरिहो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवै सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसते ताहें ओबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर

सहाय दुष्ट दोख दे ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मो हो सहाय दुष्ट दोख दे ले हो बचाई सवैया पैंग हे जबते तुम्हारे तब दे को आंख तर नहीं आने राम रहीम ब्रान कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्य सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहे हम एक ना जाने श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कह हो सब तो हे बखाने दोहरा सकल द्वार को छाड़ के गए हो तो हर द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हारो द्वार वही गे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मनमजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख सब मिसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सवना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे करदा तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मने वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दिया एह वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सचा नाम मेरा धारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तें सुख हुआ तित हर अन्न हद बाजी आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पौनी कहते पवित सतगुर रहा परवरे बिनावंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाहद तुरे सुनते पौनी कहते पवित सतगुर रहा परवरे बिनावंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जात नाही मैनो जग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तीवा तन मन थी वे हरे आ तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की

सुखने। कोए न जाने तुमरा अंत, उचेते उचा भगवंत। सगल समगरी तुमरै सुतर तारी, तुमते होए सो

गुरमुख हर फल पाव, गुरमुख फल पाव हर नाम ते आव। जन्म जन्म के दुख निवारे, बलहारी गुरे अपने बिटो। जिन कारज सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जप। सुख फल हर जन पाह, नानक कहे सुनाओ जन पाई। सुख सुहिलड़ा हर त्याह, सुन हर गुण पीने सहज सुपाए। गुरमत सहज नाम ते आए, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया। तिन जन्म मरन पौ पागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई। सोजन हर लिव लगा, जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी। तेन अनदिन हर गुण गाए, सुन मन भीने सहज सुपाए।

दीन दर्द दुख पंजनो कट कटनो थे अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रवसाथ। पांच प्याले पांच पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलटकै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो वारी दल भंजन गुरु सूरमा वड योदा बो पर उपकारी। सो कौटल गुरु सेवी है नस सह सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण जाए। हो वै सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी है। तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी ओ सूही महला पंजवां।

के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पात शा मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पात शा सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठियां सो सबना दा वेसाहो जिस पास बैठियां सो ही है

सब जन के बंधन तोड़िए हर कृपा ते हुआ हर भगत जना के मोड ठै जगत तरिया सब लोड़िए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सर्वे कायनात दे सांझे रहबर जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त तथा वक्त दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर समरथ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान साध संगत जी वडभागे हो जो अमृत वेले दे दीवाना अंदर हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया का अज का पावन मुखवाक बिहागड़े की वार अंदर तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज अते पौड़ी श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज बख्शिश करते हैं जो सतगुरु जी की बाणी पावन अंग 549 अते 550 उपर सुभाए मान है। सतगुरु जी कृपा करन अपने हुक्म अनुसार जीवन जीवन दी समर्था सूझ बख्शन जी। आओ अज दे ए पावन वचन अपने हिरदे अंदर वसाउण दा यतन करिए।

और श्लोका ना श्लोक की महले पहल के ठुंड यसराजे कितनी सलोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने